मैं वेला वे हेड ऑफिस के मार्केटिंग सेट का आगे नहीं ने लड़े ना खा ओया वाई वे सेट का ही ओ कुमे का तो करेगा ना जाए वे वा

आदरणीय तरंग मां संते पुराम निद्राशीलियुनो माल है मंत काले दीपि पुनत हेम एक मेक पारक तुरुल करन आदरे के लिए आने दीपन तरागन नो बेसे नास ये आदरे मत पारे वेडी हिमिनो अन्न टहमो ना तब ससरे टमलिया भी आते मांग आदरे निर्नामिकाए

आदरणीय तरंगा स्तुति अबे पैसे से मुझे गदा स्तुति तरंगा नीला हास से सारा दिल ने दारू पकड़ में द खुद के लाव बबल ने दारू के टैक एक ही बिंदी ना पोलो डाले दस बालागिन मामा हो देखा ला जीवित है दिया तलावे हो देखा लावे

इतना पास मत आओ मैं तुमसे बर्बाद कर दूंगी मैं तरह लंगटे ने पमंगो अब पूछ लदाना माटो ने आगे आदरे पहन सर सेना

सुबम सुंदर मंदारम रात्रि अकेवा तरंगा ओ काले अक्षंत मगे में वेला हिटिया मुल विश्वेत में रहसिन मामे संदेशी सिला सविंदा तारु कच्चर माधी है बलागे नीटिया देख के ना आई थी संदरस धारे विंदी में कच्चर ना सन सुना दमा इतनी नंबर किया ने ए तारे में टम मास सन से हुए मगे संदा अमन तकराने किया ना द आई थी अग्नि तो ना अलावेन नांती

0: मानदारम सुंदरी समान रसीत माले आयन वाला था हमदाम वसंत एमल पूदीने कोटे तवत समान रसीत माल एक में कवरक माल पुबदने कोटे वांचने के बामरु लांगोनत ए पीबी दोनों एक में माला पिनी कांदोलिन सेदी दिए भी मिली न वकियो वसाने हेमंते नोहान तुने ना थराम भाव करेगा हगाने वित ओ वांचने के बामरु नोट एम वे
1: पाविन वाला
0: निर्नामिकाई

मुझे तेरा जी जलाड़का मिल जाए तो क्या बात हो मटो आवागे कोल्ले काम मुना एक नियम आए वेलाव के टनिंद न तिकराई वेलाव के सनसील न तिकराई एत एत मंगा आदरे करने का नातर नौकराई